0: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
1: अहिले बिहानको 11 बज्यो।
2: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल, सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।

0: तिमीले मेरो माया तोड्यौ, मेरो विश्वास तोड्यौ, मेरो सपना तोड्यौ। हेर्नु छैन मलाई तिम्रो पापी अनुहार।
1: प्लिज मेरो कुरा त सुन। हिँड तिमी मसँग पहिला।

0: még svédzártozom, Ahmed Dar.
1: आफ्नै फिल्म टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो। टाइम चेकको साथमा अन्दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाँडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बालमन्दिरमाथि उखलढुङ्गा।

0: még se egy áldozom, át még az.
1: आफ्नै फिल्म टाइम चे
2: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो। टाइम चेकको साथमा अन्दयाल सुनचाँदी उद्योग तथा भाँडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बालमन्दिरमाथि उखलढुङ्गा।

सचिव ज्ञान बहादुर खत्री को सदस्य बालकुमार श्रेष्ठ तथा जनसेवा गुठी परिवार सिद्धिचरण नगरपालिका 11 रमाइलो डाँडा

0: आफ्नो एफएम टाइम चेक
1: ले बिहानको 5 बज्यो।
2: टाइम चेक का साथमा ओमदयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि ओखलढुङ्गा।